हे कृष्ण सर्वदेवा देव देवता आत्मा आत्मा वासुदेव जे को जाने भयो नानक ताका दास है सुंदर जम देव माला पला कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होवे पड़ी पड़ा हुआ बिन है।

तिलक लाटंग दे तोती बसर कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं संपो कटने चो कर्मं को नानक ने चो त्यावे विन सतगुरु।

बैठे पड़िया मत पिटै वे मत पिटै एहो अन्न साडा फिटै तन फिटै फेड़ कर दे मन जूठै चुली पड़े कौ नानक सच त्याई सच होवे ता सच पाई पड़ चिते।

एक वो सच्चा सोई जित मुक्सदा सलाया पगर तिचार नानक ते मुख उजले तित सच्चा दरबार पौड़ी सबको आखे अपना।

मीठे तेरे बोल द्वारिका नगरी, काहे के मगोल। बल बल जाऊं हों सद बल जाऊं, निकी तेरी बिगारी अले तेरा जह जह देखो तह तह स्वामी, कोई ना पहुँचन हार। जो जो करे अवज्ञा जन की, हो गया तत्सार। करन हार रखवाला हुआ,

0: गुर मिल खुले फसे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शान बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई इक उत्तम बंथ सुनयो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सत्कार योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों सतगुरु महाराज दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी दा लाहा प्राप्त कीता है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दा पावन शब्द भाई साहब जी पासों सरवन कीता पवित्र बाणी दी विचार दे नाल जुड़न लई मन बिरतियां नूं एकागर करदे होए निमाणे जे हो के सतगुरु जी दे चरणा च हाजरियां लवाइए। गुरु पातशाह जी अज दे शब्द दे राहीं मनुखी दुनियावी जीवां नूं जो समझाउणा चाहुंदे हन प्यार सत्कार दे नाल समझण दा यतन करिए जी।

0: सच खरा सच अरुवा।
1: आप जी रोजाना इस स्थान तो अमृतमई बाणी दी लड़ीवार शब्द विचार दा लाहा प्राप्त करदे आ रहे हो। धन धन गुरु नानक देव महाराज सतगुरु जी वल्लों वडहंस राग दे विच जो पावन शब्द उचारण कीता, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र बाणी पावन अंग 581 अते 82 दे उपर ये पावन शब्द सुभायमान है। गुरु नानक साहिब महाराज जी मनुखी जामे दे विच आए हुए जीआं नूं समझाउंदे ने, मनुख नूं ही समझाउण दी लोड़ पै रही है, क्योंकि ये भुलिया होया, ये अपने रस्ते तो खुंझ चुका है। जो शुभ गुण एकत्र करने सी, ये शुभ गुण छड़ के अवगुण इकट्ठे कर रहा है, ते अवगुणा दे नल भरिया परमेश्वर वाहिगुरु जी दे घर दे विच परवानगी नहीं मिलनी। जे असी चाहुंदे हां कि वाहिगुरु दे घर विच सानू परवानगी मिले, उहदे लई शुभ गुण चाहीदे ने। जे असी मालक दे दर ते परवान हो जाइए, उहदे लई गुण चाहीदे आ। ते मनुख दे कोल की है? अवगुण। इस लई महाराज एक जिंदगी दी सच्चाई दसदे ने कि किते इस मनुख नू मन दे तल ते होश आ जाए, ये मन सुचेत हो जाए। मन अवेसला होया होया है, मन विकारां दी नींद विच सुता है, इनू जगाउणा है, जगा के समझाउणा है। बाबा हे भाई, गुरु नानक साहब देखो किन्ने प्यार नाल आवाज मारदे आ। आखना यह है कि हे भाई, पर मर्ज कह की रहे ने बाबा, आवाज मार के कहिंदे बाबा आया है उठ चलना, तू इस दुनिया दे विच आया है, पर यह भी ध्यान रखी एक दिन उठ के चलना भी है, क्योंकि ये संसार दी खेड बनाई है मालक ने, जिहड़ी किसे वास्ते भी बदल नहीं सकती। दुनिया दे विच असीं देखदे हां, जिस समाज विच असीं अज रह रहे हां, इस समाज दे विच एक VIP कल्चर है, जिहदे विच बहुत सहूलतां ते बड़ी छूट दे दित्ती जांदी है। क्यों? क्योंकि ये VIP है। पर मर्ज कहिंदे ने इह ध्यान रखी जिहड़ा कुदरत ने नियम बनाया ना, उहदे विच किसे नूं कोई छूट नहीं है, उत्थे सारियां वास्ते इक्को ही रूल है, इक्को ही नियम है। जो परमेश्वर ने नियम बना दिता वो सारियां वास्ते इक्को जिहा है। जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, जिहड़ा आया है उन्हें चलना है। ये जिंद आई है, इस जिंद ने शरीर नूं छड़ के चलना है, शरीर उरार ही रह जाना है, शरीर ने नहीं जाना। गल इस शरीर अंदर उस जिंद दी है जो इस शरीर विच आके बैठी है, और इस जिंद ने चले जाना है। पिंजरा उत्थे ही रह जांदा है, पिंजरे विच पंछी उडारी मारदा है, पिंजरा ते उत्थे ही रह जांदा है। ये शरीर एक पिंजरे दी तरह है, इहदे विच एक जिंद रूपी पंछी बैठा है, जीव रूपी, उन्हें एक दिन पिंजरा छड़ के उड़ना है। महाराज जी कहिंदे ध्यान रख आया है, ये सच है कि तू आया है, पर ये भी सच है कि उठ चलना, इस जगत तो एक दिन उठ के चलना भी है। जिहड़ा उपजिया है उन्हें बिनसना भी है। असी बहुते खुश ना होइए कि अज मेरी वारी नहीं आई, पर महाराज कहिंदे हो सकदा अगली वारी तेरी होवे। तू दूजिया नू देख रहा है भी फलाना चला गया, वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया, पर वारी तो तेरी भी आ रही है। एक तो गिनती शुरू होंदी है ना, हुण जिहड़ा 80 नंबर ते है, 90 100 ते है, वो कहिंदा मेरी वारी थोड़ी है, पर ये भुल गया भी जे 30 ते नंबर ते वारी आ गई ते वो 30 घट भी तो गए ने। तू 100 नंबर ते रह के खुश हो रहे हैं, पर ध्यान रखी हुण 100 नहीं, उहदे विचों 30 माइनस हो गए है, तेरा ते जीवन 70% रह गया। फिर घटदा घटदा घटदा एक दिन वारी आ जानी है, फिर 99 तो 100 आ जाना है। महाराज कहिंदे तू जाग, क्योंकि ये वारी जिहड़ी है पता नहीं किहड़े वेले नंबर तेरा लग जाना है। जो उपजियो सो बिनस है, परों आज के काल। जे अज वारी नहीं आई तो भलके आ जाएगी, सवेरे नहीं आई तो दुपहरे आ जाएगी, दुपहरे नहीं आई शामी, शामी नहीं आई राती, अज नहीं आई तो कल, पर वारी तो आनी है। क्योंकि असी उस लाइन विच लगे हुए हैं जिथे वारी आनी ही आनी है। ये भी नहीं भी मैं उस लाइन चो निकल जावां, उहदे विचों निकलिया भी नहीं जाना। क्योंकि मरन लिखाए मंडल में आए। जो उपजियो सो बिनस है, परों आज के काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। उदे गुण गा, इसलिए महाराज कहिंदे ध्यान रख कपड़ रूप सुहावना, छाड़ दुनिया अंदर जावना। ये तो सच है कि दुनिया अंदर छड़ के इस जिंद ने उठ के चलना है, पर नबेड़ा तो कर्मा का होना है ना। उत्थे नबेड़ा जिहड़ा वो साड़ियाँ जमीना फैक्ट्रियाँ जां फिर सरकारी रुतबे जां VIP जिहड़ा स्टिकर लगा वो जां बैंक बैलेंस, ये देख के नबेड़ा नहीं होना। नबेड़ा होना कर्मा का, मंदे चंगे कर्मा दा, चंगे आईयां बुरे आईयां, वाचै धर्म हदूर। कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना। इसलिए महाराज कहिंदे बाबा हे भाई होश कर, आया है उठ चलना, जे तू आया है ते उठ के एक दिन चलना भी है। क्यों? यह जग झूठ पसारोवा, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीक। पर जिन्हों असी सच करके मन बैठे हैं, ये भरम है साडा। भरम की है? असी इनू सच मन के बैठे हैं, पर यह सच नहीं, ये झूठ है। बचपन झूठ सी चला गया, जवानी झूठ सी चली गई, तो बुढ़ापा कड़ा सच है ये भी चला जाना। कोई जेड़ा चला गया वो एक सुपना ही बन के रह जाता है, वो सुपना ही हो जाता ना। तो महाराज कहिंदे ये जगत है ही सुपने की न्याई है। इत्थे जेड़ा आया उन्हें उठ के चलना, क्योंकि ये जगत जेड़ा है झूठ पसारोवा, ये चारे पासे पसारा झूठ दा है, उपज के बिनस जान वाला है। गुरु नानक साहब महाराज जी समझाउंदे आ, कहिंदे चल तू रोज़ मर्रा जड़ी जिंदगी जी रहे हैं, तू यही देख लै कि दिन आया चला गया। सवेरे तू उठ के क्या दिन आया, ते शाम नू तू कहना दिन चला गया, रात शुरू हुई तू आख्या रात आई, सवेरे अख खुली ते आख्या रात चली गई। इस तरह एक दिन तू भी आया ते एक दिन चले जाना है। जो दिन आवै सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। किसे थिर नहीं रहना इत्थे, साढ़े तो पहला नहीं रहे, उन्हां तो पहला नहीं रहे। वारो वारी आपो अपनी है। इसलिए महाराज कहिंदे झूठ दा पसारोवा है, ये सारा पसारा झूठ दा है। सच ये है कि तू जिन्ना समा मिलदा बंदगी कर, जिन्ना समा मिलदा तू परमात्मा नू याद रख, क्योंकि चलण दा समा तैनू नहीं पता, आए दा समा ते पता है, वो ते आपां नोट कर लिया। आए दा समा ते जिहड़ा सी आपां वो नोट करके रख दिता पक्का, पर जाण दा समा नहीं पता। जे जाण दा भी पता होवे फिर ते बेफिक्रे हो जाइए, पर जाण दा समा नहीं ना पता। क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए, कदों सद्दा आ जाना कोई पता नहीं। अचिंता बाज कदों पै जाना उहदे हुक्म दा कोई पता नहीं। जो मन चित ना चेते सन सो गाली रब किया। इसलिए महाराज कहिंदे बाबा जाग हे भाई, हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो अवसर बीतियो, जात है कहियो मान लै मेरो। ये महाराज नूं की लोड़ पई है, वो साढ़े भले वास्ते समझा रहे ने। ते बंदा नूं समझाओ ना, ते बंदा कहिंदे ठीक है मैनू की लोड़ पई है, सानू साडा भला करना चाहुंदे ने महाराज, कि तू इत्थों इत्थे जिहड़ा लाहा खट्टण वास्ते आए वो खट के ले जाए, किते खाली आया ते खाली ना तुर जाए। सतगुरु महाराज जी समझाउंदे आ, प्राणी तू आया लाहा लैण, तू इत्थे लाहा लैण आया, कर बंदे तू बंदगी वाला। इसलिए झूठ दा पसारोवा है, पसारा है, इनू तू सच करके ना मन बैठ। बस ए मन दे विच रख भी मैं एक दिन उठ के चलना है, पर चलण दा समा कदों आ जाना है ये कोई पता नहीं। गुरु महाराज जी गुरु नानक साहब जी

0: ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਪਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੇੜ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੇੜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਗੇੜ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਨਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਪਜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਿਨਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਏ ਪਤਾਰ ਨਾਨਕ, ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੈ ਕੇ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਛੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁੱਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਦੁੱਖ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ। ਬਿਨਸੈ ਜੱਗ ਸਬਾਏ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਬਿਨਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਪਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਤ ਤੁਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਬਿਨਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਮੰਗ ਤਾਂ ਮਰਨੰਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਸੁੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਵਣਜਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਣਜਾਰਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ
1: ਲਭ ਧੰਦੇ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਭੁਲਾਇਆ ਕਾਲ ਖੜਾ ਰਵਾਏ।
0: ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਭ ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵੀ ਵਿਛਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, जे तू गुरु नू नाल लैके चले फिर ये रस्ता मोह माया दा क्लीयर हुंदा जाएगा, फिर कोई रुकावट नहीं आएगी। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत स्यों प्रगट जाए। वो इज्जत नाल जांदे आ ठाक, मैंने उन्हां दे राह च रुकावट कोई नहीं पैंदी, पर उहदा हुक्म मन के तुरना पैणा ना। नहीं तो यह गेम एक खेड है, माया ने जाल विछाया, चमक दिखाई, उन्हें रस्ता भटक गया। जिहड़ा रस्ता भटक गया वह कदे मंजिल ते नहीं पहुँचता। भुल्यो मन माया उलझायो, इन्हें उलझा दिता। इस वास्ते महाराज जी कहिंदे जगत भुलाया, ये जगत विच इस मोह माया ने इन्हां लोकां नूं भुला दिता। ये भुल गए आके इस मनुखा देही विच भुल गए कि मेरा जन्म किस वास्ते है, मैं करना की है ते कर की रहा। ये जड़ा मार्ग है, ये जड़ी खेड है, ये सौखी नहीं है, देखण नूं सौखी लगती है। जिन्ने खिडारी खेड रहे होंदे आ वह देखण वाले ते कहिंदे लै ये तो गेम है ही, खेड बड़ी सौखी है, पर जो मैदान च आके खेडना पे ना फिर पता लगता है। कई कहिंदे आ जी ये माइक ते बोलना बड़ा सौखा है, पर जो माइक सामने आ जाए तो बोल नहीं निकलता, कईयों के बोल नहीं निकलते, ये कहना ही बड़ा सौखा है। क्योंकि देख के कहना सौखा है, पर जो आप उस जगह ते आवेंगे पता फिर लगता है। इसलिए महाराज कहिंदे ने भगतां की चाल निराली, चालां निराली, भगतां केरी बिखम, मार्ग चलना ये मार्ग सौखा नहीं है। जे तू कहे मैं रीस करके नकल करके हो जा पास, इत्थे नकल नहीं चलनी। सुन गल्लां, आकाश की कीटा आई, रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े, ठीस कूड़ कुड़ियार कोल की है, ठीस गप्पां ही नहीं उहदे कोल, उहदे कोल कुछ नहीं है। इसलिए महाराज कहिंदे ये जिहड़ा लभ धंदा माया, जगत भुलाया, काल खड़ा रुआए, वो जड़ा मौत दा मौत अगे खलोती है, उन्हों भी ते पार करना है। निरंकार दे बेगमपुरा शहर को नाओ पहुंचना है, ते उत्थे फिर काल भी ते सता रहा है, उदा डर भी ते अंदर सता रहा है। इसलिए कहा सी चिंता तांकी कीजी है, जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई। तू काल देख के डरना, उन्हें उदा काम ते डराउना है, उदा काम तेनू रवाउना है। तू डरना ते रो ना, तू दा खिड़े मथे जा भी मैनू ये काल तेनू मैनू ये परवान है। क्यों? क्योंकि मैं जिहड़ा लाहा लेना सी ले लिया, मैं जिहड़ी बंदगी करनी सी कर ली, हुण तू काल मेरा की बिगाड़ लेंगा। मैं जिहड़ी जिंदगी दा लाहा लेना सी ले लिया। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, जिहड़ा सवार के चलिया वह काल उन्हू रवाउंदा नहीं, उन्हू डराउंदा नहीं। वह तो कबीर जिस मरना ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाईए पूर्ण परमानंद। इसलिए महाराज कहिंदे जिहड़े कूड़ नाल लब नाल भरे हुए ने उन्हां नू फिर काल खलोता रवाउंदा है, डराउंदा है। वो हर वेले डरदे सहमे सहमे रहिंदे हन। सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब जी इस पहले पदे दे विच सानू ये गल समझाउंदे ने समय दे मुताबक। वैसे तो दो पदियां दी विचार गुरु महाराज दी किरपा नाल होनी सी, पर समय दे मुताबक आपां इक पदे दी विचार ही समझ लईए। क्यों? क्योंकि अज धन धन गुरु रामदास महाराज पातशाह जी का गुरता गद्दी दिवस है, वो मुबारक दिन है। पहले शब्द नूं समझ लईए। गुरु नानक साहब रोज़ आवाज़ां दे रहे ने, साढ़े कन्नां विच आवाज़ पवे ते मन तक पहुँच जावे। कई बार ना घर दे विच माँ बाप आवाज़ां मारदे आ, नहीं सुनदी, उहदे कोल जाके कहिंदे वी मेरी आवाज़ तेरे कन्नां च नहीं पैंदी। कहिंदे ना पाम वी मेरी आवाज़ तेरे कन्नां च नहीं पैंदी, ते जे उह कहे जी पैंदी है फिर सुणदा क्यों नहीं। गुरु महाराज आवाज़ां दे रहे ने साडे कन्नां च पै रही है कि नहीं। कीर्तन सुन रहे हां, पाठ सुन रहे हैं, कथा विचार हुक्म सुन रहे हैं, कन्ना च ये पैर, जे कन्ना विच पै गई आवाज फिर तो मन तक पहुंचेगी, तो जे कन्ना च पई ही नहीं फिर मन तक नहीं पहुंचनी। मन कितों जागेगा, मन सुचेत किदा होएगा। जाग लिहो रे मना, जाग लिहो कहां गाफल सोया। बाबा आया है उठ चलना, आए तू उठ के एक दिन चलना, सचियार हो जा, हजे समा है, ये कूड़ दा रस्ता छड़ दे, ये विकारा दा रस्ता छड़ दे। तो जिथे गुरु नानक साहब जी ने यह समझाउण दा यतन किया है, हर एक दी रसना तो कोई दिन ऐसा नहीं कि धन गुरु रामदास महाराज का नाम मुख ते ना आउंदा होवे। साडा तो उठदियां सार ही नाम पहला धन गुरु रामदास महाराज का आउंदा है, क्योंकि गुरु रामदास महाराज जी इन्ना वड्डा घर तुहाडा, इन्ना वड्डा घर कि पूरी दुनिया तुहाडे घर आउण नूं लोचदी है, पूरी दुनिया चारे पासे वसदे लोक एक इच्छा जरूर रखते हैं भी धन गुरु रामदास जी दे घर जाना है। किन्ना वड्डा घर है गुरु रामदास जी का, जिठे सबे थाम नहीं तुद जिहा। तो जो आप भट्ट साहबान के सवैये पढ़ते हैं, राज योग तखत दियन गुर रामदास, गुरु रामदास महाराज जी ने जिहड़ा तखत दिता है ना, तखत वो राज ते जोग वाला है, क्योंकि गुरु नानक साहब का ये तखत है वो राज ते जोग वाला है। ते अज वो तखत मिल गया, जिन्ना चिरे राज ते जोग का तखत नहीं सी मिलिया उदों तक मन दे विच ए सी कि हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, पर जिस दिन ये तखत मिल गया उस दिन लोग कहिंदे आ बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। भाई जेठा जी बन के आए, बसर के तो आउंदे आ चल के गोइंदवाल साहब, उस तो पहला लाहौर तो चल के आउंदे आ नानी दे नाल बसर के पिंड, ये पिंड गुरु अमरदास महाराज दा है बसर के पिंड। ते अक्सर गुरु अमरदास महाराज भावें खडूर साहब सेवा करते हैं, भावें गोइंदवाल साहब की रचना हो चुकी है, भाई गोइंदे दे जमीन ते उसारी हो गई, तो गोंदे गोइंदे दे नाम ते गोइंदवाल की रचना हो चुकी है, पर फिर भी बासर के पिंड अपने आउंदे जांदे है। ते नानी नूं पता है कि गुरु अमरदास महाराज जी कौन ने, अक्सर मेल हुंदा रहिंदा है, 12 साल अक्सर सेवा कीती है गुरु अमरदास महाराज ने। ते बासर के पिंड वालियां नूं नहीं पता होएगा तो फिर पता किनूं होएगा भी गुरु अमरदास महाराज गुरु अंगद दे पातशाह दे दर ते किन्नियां बख्शिशां लै रहे ने, नानी नूं पता सी। फिर गोइंदवाल साहब जदों गुरु अमरदास जी गुरु दा रूप हुंदे आ ये राज योग दे तखत ते बैठदे आ, फिर गोइंदवाल साहब सिखी का धुरा बनाउंदे ने। इत्थे फिर भाई जेठा जी जिहड़े बन के आउणा सेवा दे विच लग जाणा, अपने आप नूं घड़दे आ सेवा ते सिमरन विच, शब्द दी टकसाल दे विच निम्रता बहुत है, जिन्ना कह लो उन्ना ही थोड़ा है। धन गुरु रामदास महाराज निम्रता दे पुंज ने, निम्रता दे मालक ने, अथाह सेवा कीती है। गुरु अमरदास महाराज जी दे दो सपुत्र ने, बाबा मोहन जी ते बाबा मोहरी जी, बाबा मोहरी जी का नाम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आउंदा मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए, जदों आपां रामकली सद पढ़ते हैं। दो सपुत्रियां ने गुरु महाराज दियां, बीबी दानी जी ते बीबी भानी जी, बीबी दानी जी वड्डे आ ते बीबी भानी जी छोटे आ। बीबी दानी जी जिहड़े आ उह भाई रामा जी दे नाल विआहे होए ने। हुण बीबी भानी जी दा आनंद कारज जिहड़ा उह करना है, ते वी ध्यान रखना अज अज दे समें च गुरु रामदास महाराज ने साडे ते किड्डी वड्डी कृपा कीती है, सानू आनंद कार्ज करन लई चार शब्द दे दिते है, रसम बनाती, एक मर्यादा बना दिती है कि गुरु के सिखो आ मर्यादा विच रह के तुसी धी पुत दा आनंद कार्ज करना है। पिछले दिने भी बेनती कीती सी, तुसी जिन्ने मर्जी मायाधारी लोग जड़े ने, मायाधारी कहांगा क्योंकि आम इंसान ते की सोची पै जांदा है, मैं अपनी धी दा विआह करना है ते किदां करां, उते रोटी पानी दी चिंता हो जांदी है। अज मायाधारी लोकां ने रस्मां किन्नियां बना लईयां, रोज नवीयां नवीयां रस्मां बन रही हैं, अज ये करना है, कल आ करना है, कल वो करना है, अज इस पैलेस जाना है, कल उत्थे जाना है, अज इत्थे जाना है, जिन्नी मर्जी रस्मां अज वध चुकियां निभाओ, होर वधा लो, पर जिन्ना चिर तुसी गुरु रामदास महाराज दे चार शब्दां दे नाल जुड़ के बच्चे ते बच्ची दा आनंद कारज नहीं कराओगे, आनंद कारज संपूर्ण नहीं होना। तो फिर आपां एवें क्यों इधर उधर बेफजूल दियां खर्चियां करदे हां, उहदे नाल उह चंगा ये है कि असी गुरु रामदास जी दियां खुशियां ले लईए, वध तो वध समा आनंद कारज दे समय असी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच बैठीए ते सुनीए धन गुरु रामदास महाराज की कहिंदे आ। खैर अज इन्नी को घालना घाल लई है कि जदों सोहना वर दी गल आई कि बीबी भानी जी नूं विआहुणा है, किहदे नाल विआहीए, ते फिर उदों फैसला गुरु अमरदास महाराज ने कीता। ये बड़ी बार इतिहास तुसीं सुन चुके हो कि माता जी ने पुछया ते माता जी ने कहा, गुरु महाराज ने फैसला ले लिया कि जे मैं अपनी धी का विआह करना है तो भाई जेठा जी दे नाल करना है। की देखिया, कमाई बाहर दी देखी, जमीना देखिया, कुछ नहीं देखिया, बस अंदर वाली कमाई, असी अंदर दी नहीं देखते, असी बाहर दी कमाई देखते हैं, रिश्ते करन लगे हैं, पर गुरु महाराज ने अंदर दी कमाई देखी है, बाहर दी नहीं देखी, अंदरों कितनी वड्डी कमाई वाला है। इस वास्ते आनंद कार्ज होया धन गुरु रामदास महाराज का, और बीबी भानी जी भी जिहड़े आ भाणे विच रहण वाले, नाम भानी नहीं है, भाणे विच रहण वाले ने, निम्रता वाले ने, प्यार वाले ने बीबी भानी जी। आनंद कारज होया, किन्नी वड्डियां बख्शिशां मिल गईयां, पर माण नहीं कीता, मैं इस घर च विआया, साडे ते पैर नहीं लगदे थले, माण नहीं कीता कि मैं इस घर दा परौणा जां इस घर दे विच विआया, उसे तरह निम्रता विच सेवा कर रहे, निभ के सेवा कर रहे। मारे कहिंदे हस्ती सिर ज्यों अंकश है, अहरन ज्यों सिर दे, मन तन आगे राख कै उबी सेव करे, इयों गुरमुख आप नवारी है, सब राज सृष्ट का ले। ते ए कोई बचन झूठे नहीं, सच ने, सब राज सृष्ट मिलिया धन गुरु रामदास महाराज, सारी सृष्टि का राज मिल गया। लाहौर विच ते अपनिया ने भी पछाणन तो इनकार करता सी, घर दे दरवाजे बंद करते कि असी नहीं इहदे कुछ लगदे, इह नहीं साडा कुछ लगदा, अज सारी सृष्टि दे मालक ने धन गुरु रामदास जी। पर इउं गुरमुख आप नवारी है, वो सानू ये निभना नहीं ना आउंदा, असी ते कदम कदम ते मैं करदे आ, मैं आ कीता, मैं ये कीता, मैं इन्ना पाठ कीता, इन्नी सेवा कीती, इन्ने भांडे मांजे, सारा दिन रोला पाउंदे फिरदे आ, पर इउं गुरमुख आप नवारी है, इदां निभना पैणा है। समा आया, संगतां विच विचारां शुरू हो गईयां। एक गल ध्यान दे विच रखियो, जदों सोढ़ी आए सी ना चल के लाहौर तों, ते मिट्टी दा टोकरा सिर ते सी, ते उह कहण लगे वी आ मिट्टी दा टोकरा इहनूं चकाया होया तुसी। महाराज हस के कहिंदे, तुहाडी नज़र दे विच फर्क है, इह सिर दे उत्ते मिट्टी दा टोकरा नहीं, इह ते उस मालक दा छतर झूलदा पिया सिर ते, इह ते निरंजनी छतर झूलदा पिया। ते भाई लहणा जी वेले भी माता जी ने कहा ना, अकादी पांडे दे सिर ते रखाती है, महाराज कहिंदे इहदे सिर ते छतर झुलाया, और जेड़ा ये बस्तर चिकड़ नाल लिबड़े ते दरगाई केसर छिड़किया होया है, फर्क नजर विच फर्क है ना। वो शतर ते महाराज ने चलाता सी, जदों सिर दे उत्ते मिट्टी दी टोकरी महाराज ने चकवाई। बौली साहब की सेवा विच गुरु रामदास महाराज ने बहुत सेवा की, होर इतादक बड़िया सेवावां कीतियां। अज जदों संगत विच विचार चली कि भाई जेठा जी भी बड़ी सेवा करते हैं ते भाई रामा जी भी बड़ी सेवा करते हैं ते गुरु महाराज का दोवां नाल ही बड़ा प्यार है, पर यह तखत किनू देणगे? राज जोग तखत दियन, ये तखत किनू देणगे? राज ते जोग वाला संगत कहिंदी भाई रामा जी, अद्धे कहिंदे भाई जेठा जी, फैसला नहीं होया। कहिंदे आपां अपना फैसला छड्डीए, गुरु महाराज तो पुछिए तुहाडा की फैसला है। गुरु महाराज कोल आए, साहब कहिंदे मैनू थोड़ा जा समां दिओ, क्योंकि ये तखत कोई दुनियावी तो है नहीं, ये कोई तखत दुनिया का है नहीं जिहड़ा धक्के नाल कोई खो के ले लेगा। महाराज कहिंदे समा दिओ, पता लग जाएगा भी किहड़ा इस तखत दे हकदार है। दो थड़े महाराज ने बनवाए बौली साहब दे कोल, एक थड़ा अज दिसदा एक नहीं दिसदा। पता किहदा नहीं दिसदा? होमे वाले का, निम्रता प्यार वाले का थड़ा। अज भी तुसीं देखो जदों बौली साहब जाने गोइंदवाल साहब, अज भी उत्थे वो थड़ा है जड़ा प्रवान हो गया। भाई रामा जी सारा दिन थड़ा बनाया, शाम नू महाराज आए, सोटी हाथ च पकड़ी सी क्योंकि उम्र वध हो चुकी है। सतगुरु महाराज जी 90 तो प्लस ने, ते जदों आए हौली हौली तुरदे तुरदे ते महाराज कहिंदे भाई रामा थड़ा जड़ा सी मेरे बैठण योग नहीं बनिया, मत्थे ते थोड़ा जा वट माड़ी जी त्योड़ी आ गई। ये कमाल दी गल है, सारा दिन लग गया थड़ा बनाउंदिया ते आके एक मिनट नहीं लगा भी थड़ा नहीं वधिया। भाई जेठा जी कहिंदे महाराज ढा दिना हुणे नहीं वधिया बनिया, तुहाडे वांग जो तुहानू चंगा लगे उदां दा बनाउणा है। दूजे दिन फिर इदां ही, तीजे दिन फिर वह पहले एक त्योड़ी सी, तीजे दिन मत्था ही भर गया त्योड़ियां नाल, खिज गया भाई रामा। कहिंदे महाराज असल च तुहारी उम्र वड्डी हो गई है, तुहानू पता कुछ नहीं लगता, ये थड़ा नहीं हुण मैं ढाउणा, ये मैं बनाया, मैं किदां ढा दियां। महाराज कहिंदे ठीक है। फिर भाई जेठा जी कोल आए ते कहिंदे सतगुरु मैनू माफ करियो, अज तीजा दिन आ गया, मैं इन्ना मेरी मत थोड़ी है कि मैं तुहाडे बैठण योग थड़ा नहीं बना पा रहा। नेत्रां विच नीर सी ते हथ जुड़े होए, तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी, मैं तुच्छ मत दा हां, अगली बार सतगुरु मेरे सिर ते हथ रखियो मत दे के जायो, मैं तुहाडी मत नाल तुहाडे वर्गा थड़ा बनावा भी जिहदे ते तुसी बैठ सको। लो मैं हुणे ढा दिना। महाराज ने हथ पकड़िया, भाई जेठा तेरा थड़ा सानू प्रवान है, असी तेरे बाहर दे नहीं अंदर दे थड़े ते बैठना है, ये जोत ने अंदर दे थड़े ते जाके टिकना है। सतगुरु महाराज जी आसन ते आए, दीवान सजिया, धन गुरु रामदास महाराज नू आवाजा दिता, उठ गए अपने तखत तो ते गुरु रामदास जी नू बिठाता। अमरुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापे। महाराज ने कहा अज तो गुरु नानक साहब दी जोत दे मालक धन गुरु रामदास जी होणगे। फिर धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजन हारे तारिया, सिखी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। कहिंदे हुण इह पार ब्रह्म है, गुर परमेश्वर एको जान, ये हुण रब हो गए है, हुण सिखा ने ते संगतां ने रब करके नमस्कार कीती है और रोज अरदास करदे है। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह, भरम पै भूले सुत दारा स्यों, प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तैं मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो शरनाई। महाराज असी तुहाडी शरण विच आए हाँ, जिवें तुहाडे ते कृपा हो गई गुरु नानक साहब दे घर आ करके तुसी चवरां तख्तां दे मालक बन गए, तुसी बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै, तुसी परमेश्वर दा रूप हो गए, असी तुहाडी शरण विच आए हाँ, सानू भी आया नू रख लो, असी भी तुहाडे दर ते बेनती करदे हाँ। नानक

0: नानक घर के गोले।
1: धन गुरु रामदास महाराज ने गुरता गद्दी ते विराजमान होके 30 रागां दे विच बाणी उचारण करके एक खजाना सानू दिता है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। धन गुरु रामदास महाराज दे गुरता गद्दी दिवस दियां गुरद्वारा दुख निवारण साहब वल्लों समुची संगत नू बहुत बहुत वधाइयां मुबारकां। आप भी जुड़ो, होरां नू भी जोड़ो ते बाणी ते बाणी दे धारनी बनो। अज दी विचार करदिआं बेअंत गलतियां भुल्लां होईआं सतगुरु पातशाह बख्श देण, अगे तो समत सोझी देण। जो लड़ीवार शब्द आपां विचारिया गुरु कृपा नाल गुरु नानक साहब जी दे शब्द विचों ये पावन पंगतियां अपने हिरदे विच

0: जगत भुलाया काल खड़ा रोआए।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
0: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती मन मजियां वधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गा बनवाइयां।

हे मन मेरे आत्म सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सार नाम अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार ना सब रंगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो सारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही करते रह करता तेरे सब किस है स्ते सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही करते रह साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सुख गवाइया कर शांत सुख मनुआई वसया जने सांस पूजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटों इसतियाँ वडियाइयाँ कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंचम कर सुपागै कर सुपागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारे या तुर करम पाया तु जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होआ तित करन दवाजे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पई सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर हया भरपूर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतूर सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर हया भरपूर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतूर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिखखाही। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुनियो

दर्शन परसिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी। नूरे अरसों कुरसों चटी है,

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की।

जी सब थाई होय सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां

तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोलवाले बोलो जी सिखा।

कीर्तना से पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल भेटावां दर प्रवान करनिया यात्रावां सफल करनिया।

थक आए प्रभु की सामा, शोक काल गुरु से भी अहनस सहज सुपाए, दर्शन परस गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, सजन सचा पातशाह, सिर सहा दे साहो, जिस पास बैठया सोहिया, सब ना दाविसाहो, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला पंजवा, औखी घड़ी न देखन दे,

ओंकार सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब ते आवहें तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आवो संतो जी सब दुख विसार नहारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पे खारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवहें तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैना हर ते आया जी तिन टूटी जमकी फांसी जिन हर निरपौ ते आया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे व्यंत व्यंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर निक्किया अनेक अनंता तेरी अनेक करहें हर पूजा जी तप तापहें जपहें भय अंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमर शास्त्र जी कर किरिया खटक्रम करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड़यावर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करहें सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहें सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिस नौ कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरी आओ सब तुझ ही माहे तुझमिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़या संयोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाणे जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर वेखे हैं जाने हैं सोए
जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला तित सरवरड़ भईरे निवासा, पाणी पावक तिन्ह किया पंक जो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबियले मन एक ना चेतस मूड़ मना, हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया प्रणमत नानक तिनकी शरणा, जेना तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा, भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज के भल नाम, संज्ञाम लाग भव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जब तब संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्ने आहर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शर्मा, जप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्ने आहर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करोहा दे रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबय तुम काब हो आवहाद मोहिं बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबय करतारा, मोरच्छा निज कर दे करिए सब वैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखा मारि तारी है चुन चुन शतर हमारे मारी है, आब हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रक्षा, राख लियो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाये प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपथरा काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी, सिवकन को शिव गुण सुख दियो शत्रन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी दे कुंचर असथूला
सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के बड़ बड़ की जन्ने, जब युद्ध करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अबारा, जब आ करख कर तुह कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बोझ उचारे, तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत भेद भेद अर आलम, ड्रंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनीन अनादि संभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पीब न बावत बिद्दा, ताको कर पाहण अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदाशिव, ड्रंकार का चीनत नह भिव, आप आपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आजुगाय स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार या सिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणगाता, जे आस्तुता विशरण ही बरे, तिनके दुष्ट दुख तुहवाए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को इक बार ते है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए दाही सब कल, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल, कृपा दृष्ट तन जाहे न हरियो, ताके ताप तन कमाए हरिहो, रिद्ध सिद्ध घर्म सब होई, दुष्ट शाह शवै सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा।

नेह उबारी सर्वठ महो सहाई दुष्ट दोखते नेह बचाई सवैया पाए गहे जावते तुमरे तबते कौं आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे हो सब तोहे बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज आस गोविंदास तोहार सगल द्वार को छाड़ के गए हो तोहारो द्वार।

मंदामणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस भया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे आ तरस पया मेहरा मत होई सत

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास ही सहाय। अर्जन अर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए।

चेतावे, चेतावन का सदका सर्व सुख होए। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षे आर्यत, देग तेग फतेह, बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले, बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी।

जुगो जुग अटल, दीन अर दुनी दे मालको, सर्वरे कायनात दे सांझे रहबर, गुरुआं के गुरु, पीरां दे पीर, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी, तना दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन अस्थाना उपर रात्रि वेले दे देवाना अंदर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वाले हो, सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है जो अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है। आओ गुरु प्यार वालियो, जिथे गुरु के कीर्तनियां पासों सतगुरु जी की पावन बाणी कीर्तन रूप विच सरवण करदे आं, बाणी दा रस बाणी दा आनंद माण रहे सां। जो लड़ीवार गुर इतिहास दियां विचारां रोज़ाना आप संगतां इन्हां पावन अस्थानां तों सरवण करदियां हो, उन्हां चल रहीआं लड़ीवार गुर इतिहास दियां विचारां दे नाल सांझ पाईए। कल दे दीवाना अंदर आप संगत ने इथों क तक इतिहास सतगुरु जी का सरवण कीता सी कि पहाड़ी राजियां ने वजीर खां दे नाल मिलके धन गुरु कलगीधर पातशाह ते गुरु क्या सिखां दे उत्ते घमसान दा इन्हां ने हमला घालिया और गुरु के सिंघां ने भी डट के बड़ी वीरता दे नाल बड़े बल दे नाल इन्हां सारी सेना दा मुकाबला कीता। जिथे इस जंग दे मैदान अंदर बहुत सारे पहाड़ी राजियां दे सिपाही ते वजीर खान दे सिपाही मारे गए, उत्थे बहुत सारे ऐसे गुरु के सिख भी ने जिन्हां ने इस जंग दे मैदान विच शहादत दा जाम पीता। और इस जंग दे विच भाई साहिब सिंह जी जिहड़े धन गुरु कलगीधर पातशाह जी दे बहुत ही प्रेम वाले प्यार वाले गुरु के सिख, जंग दे मैदान अंदर बड़ी वीरता दे नाल बड़े ज़्यादा बल दे नाल गुरु भरोसे दे उत्ते जंग दे मैदान विच जूझदे ने और बहुत सारे वैरियां नूं इन्हां ने मौत दे घाट उतारिया। कवि जी जिक्र करते भी इन्हां ने अपनी हाथ विच फड़ी हुई खड़ग दे नाल वैरियां दे दल दा मुकाबला कीता और इन्हां नूं जूझदिआं वेख के बहुत सारी सेना ने इन्हां नूं घेरा पाया। घेरा पा के ते इकट्ठे ही सारे पासिआं तों इन्हां दे उत्ते हमला करदे ने। फिर इस हल्ले दे विच इन्हां दे शरीर दे कई अंग जिहड़े उन्हां भंग कीते, इदां कह लो भी शरीर सारा जख्मी होया। और गुरु का सिख उन्ना चिर जंग दे मैदान विच जूझदा रहा जिन्ना चिर शरीर दे विच सवास चल दे रहे। किवें उत्थे हुण जंग दा मैदान जिहड़ा है उहदे विच घमसान चल रहा है, किवें गुरु कलगीधर साहिब जी आप सिखां दी सहायता अपने बख्शिश दे नाल करदे ने, ते दूजे पासे पहाड़ी राजियां दी सेना ते वजीर खां अपनी सेना नूं किवें वंगार वंगार के गुरु क्या सिखां दे खिलाफ चढ़ाउंदे ने। आओ आपां इतिहास दे अगलेरे पन्नियां नूं विचारन दा यतन करिए। विचारन दी आरंभता तो पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखन, सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन
ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਔਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਸੱਖਣੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिख खाही माया मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुने अहु गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो।

वाहे गुरु जी की फतेह। अगम अनंत अनाद आद जिस कोय न जाने, शिव ब्रंच धर ध्यान नित है जिस

निर्मल नाम सुदा पर पूरन शबद त्रंग प्रगट दिन आगर। गहर गंभीर अथा अत बड़ सो पर सदा सब बिदरत नागर। संत मराल करह कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल युग दुर्त दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मुन ध्यान तरे फिरत सगल जुग कबहू को कौ पावे आत्म प्रगास को। वेद बाणी सहत बिरंच जस गावह जाको। शिव मुन गह नत

नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यो लोक प्रगासे देखत दरस भटक।

अपन सरस कियो ना जगत कोई, अपन आप ही उपायो, सुर नर असर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुर असुर नर, गण गंधर्व खोजंत फिरे, अविनाशी अच्छा।

0: मिट्यो ज्योतनंग बाचा कर सिमरंत तुझै तिन दुख दरिदर मिट्यो जोखनंग करम कर तो दर्श परस पारस सर बल पट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो।
1: जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मटे खिन जे सतगुर सिमरंत रिदे हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नाम निद पावे सोई रामदास गुरु बल पन मिल संगत धन धन करो जे सतगुरु लग प्रभ पाईए सो सतगुरु सिमरो नरो जिन शब्द कमाए

प्यारो दुख दरिद्र अंधियार को नाश कब कीरत जो संत चरण मुड लागे तिन काम क्रोध जम को नी

दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस मए भगता एह आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन एको एक त्याए पीवत अमृत नाम जाना

0: निरंकार सचेत महला पहला।
1: नानक निरपव निरंकार होर केते राम रवाल कितिया कण कहानियां केते वेद विचार केते नचह मंगते।

डांड जस चीर चुत पूजा खानी सेत जाहा सो मित जाने नानका सरा मेरा जलता नानक जंत पाए कै सुमाले सबना।